हम ईरान पर बहुत सख्त हमले करेंगे और एक ऐसा मौका आएगा जब वो कहेंगे बस करें, हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। अमरीकी सदर ने रिपोर्टों को भी मुस्तरद कर दिया जो ये तजवीज़ करती हैं ईरान मजबूत मौकफ पर बरकरार है। उनका ईरान बहुत बुरी हालत में है, वो बहुत बेईमानी दिखा रहे हैं, उनके साथ मामला करना बहुत ही गैर शायान शान रहा है। ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग का मुआवजना वियतनाम अफगानिस्तान की सबका अमरीकी जंगों से करते हुए कहा अमरीका सिर्फ 5 माह से मुलव्वस है, ईरान के को तबाह करती है। ईरान के साथ मुज़ाकरात के बारे में ट्रंप ने कहा मैं इन पर से इत्तमाद खो रहा हूं क्योंकि वो झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा मुज़ाकरात के दरमियान मैं स्टीव विटकॉफ के फोन करने का इंतजार कर रहा था, इसके बजाय मुझे पेट हेक्सित की कॉल आई कि उन्होंने अभी हाल ही में उर्दुन के हमारे एक अड्डे पर 5 मिसाइल दागे, हमारे उर्दुन में अड्डे भी मौजूद हैं। स्पेन ने शुमाली अफ्रीका में वाकई स्पानवी इलाके सियोता में महाजरीन के बड़े हजूम को पलटा दिया है। सरहद को खुश्की और समंदर के रास्ते अबूर करने वाले 50,000 से अफराद में से ज्यादातर पहले ही रजाकराना तौर पर वापस जा रहे हैं। हस्पानी वजारत दाखिला जुमे को कहा जुमेरात की सुबह से तकरीबन 50,000 अफराद सरहद अबूर कर चुके थे और अंदाजा है कि जुमे की शाम 6 बजे तक 48,300 वापस लौट चुके हैं। सियोता के मुकामी हुकूमत के सरबरा ख्वान जेसिस व्यास ने कहा पिछले चंद दिनों में तकरीबन 60,000 अफराद सरहद को पार कर गए थे। सियोता में स्पेन की मरकजी हुकूमत के नुमाइंदे ने जुमे को बताया कि सरहद के हस्पानी जानब 57 लाशें बरामद हुई हैं और मराकशी जानब मुमकिन तौर पर मजीद लाशें मौजूद हो सकती हैं। उनका कहना था कुछ अफराद डूब गया, कुछ सरहदी बाढ़ को सपोर्ट करने दीवार पर चढ़ने की कोशिश के दौरान कुछ ले गए। मराक्षी फोर्सेस ने सियोता के दरवाजों पर भीड़ को लाठियों आंसू गैस से पीछे धकेला, छोटे से स्पानी इलाके में मजीद दाखिले की रोकने की कोशिश की। सरहद पर इस हजूम ने यूरोप में इख्तलाफात पैदा कर दिए जहां दूसरे यूरोपियन के रहनुमा ने स्पेन से कहा इस चीज को अपने कंट्रोल में ले ले। राइटर्स न्यूज एजेंसी ने इलाके की सरहद पर मुशाहदा किया कि मराक्षी पुलिस ने हंगामी साजो सामान पहनकर बाढ़ के करीब जमा कुछ लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया। वाटर कैन ट्रक्स तैनात किए गए, भीड़ के साथ झड़पों के नतीजे में एक बस 7 गाड़ियों को जलकर तबाह होते हुए देखा गया। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जारी करदा तहरीरी बयान में बताया रूस ने आज दोपहर हुकूमत पर मिसाइल हमला किया है। क्लिचको ने बताया हमला मकामी वक्त के मुताबिक 2:36 पर हुआ और कीव की तरफ बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। क्लिचको ने कहा सामने से दोपहर हुकूमत के मुख्त इलाकों को नुकसान पहुंचा। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक हमले में 9 अफराद हलाक हुए, 28 जख्मी हुए जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। यूक्रेन की रियासती हंगामी हालात सर्विस का भी कहना है कि कीव के 5 मुख्तलिफ इस्लामी इमदादी कार्रवाइयां तहत जारी हैं। यूक्रेनी फौज ने कहा है कि इसके रूस के खिलाफ फजाई हमले जारी रहेंगे। सोबियानी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मास्को इलाके के खिलाफ ड्रोन हमलों के बारे में एक बयान जारी किया। सोबियानी ने बताया कि गुज़िश्ता माह इलाके को ड्रोन हमलों का निशाना बनाया गया। यह कम तक 31 जुलाई के मास्को इलाके की तरफ 6,225 ड्रोन उड़े जिनमें से 780 को दहाकुन मास्को के नजदीक फजाई दिफाई निजामों ने नकारा कर दिया। रूस के बेलगोरोद खत्ते के कायम काम गवर्नर अलेक्जेंडर शुआव्यफ ने भी अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा यूक्रेन फौज ने गुज़िश्ता 24 घंटे में इलाके पर कसीर नाले रॉकेट लॉन्चर तोपखानों तैयारों ड्रोन से 58 बार हमला किया। शुआइफ ने बताया इस दौरान 131 ड्रोन को फजाई दिफाई निजामों ने तबाह कर दिया। हमलों में 2 अफराद हलाक और 11 अफराद जख्मी हुए। रूसी वजारत दफा ने ऐलान किया मकामी वक्त के मुताबिक कल शाम 8 बजे से आज सुबह 7 बजे तक यूक्रेन के 276 ड्रोन को फजाई निजामी दफाओं ने गारा कर दिया है।

0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: एचटीके के 26वें ग्रुप यूनिट ने सूडानी फौज के सामने हथियार डाल दिए। सूडानी रैपिड फौज से ताल्लुक रखने वाले यूनिट अपने तमाम अहलकारों फौजी साजो सामान समेत फौज के सामने हथियार डाल दिए हैं। सूडान की सरकारी खबरसा एजेंसी न्यूज एजेंसी सूडान के मुताबिक यूनिट रैपिड सपोर्ट फोर्सेस के 26वें ग्रुप के ढांचे का हिस्सा था। तमाम हथियार डालने वाले अफराद की तादाद या इस हवाले से किए गए सामान की किस्म का इंकशाफ नहीं किया गया। एजेंसी ने इतला दी कि अल नूर अल कुबा के नाम से मशहूर ग्रुप को सूडानी फौज जनरल इंटेलिजेंस सर्विस के आला अफसर ने अल नूर अहमद आदम के सपुर्द किया है। ट्रंप ने यूक्रेन के लिए पैट्रियट मिसाइल बनाने के अपने वादे को वापस ले लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक किया वाशिंगटन अभी तक यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम

तैयार करने की इजाजत देने पर इत्तफाक नहीं किया, लेकिन इस पर बातचीत जारी है। ट्रंप ने कहा, अमरीका को दूसरों को अपना जदीद मिसाइल सिस्टम तैयार करने की इजाजत देने के बारे में बहुत मुहतात रहना चाहिए। इनका ये रिमार्क्स इस वक्त सामने आया जब उन्होंने पहले यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत के दौरान ये इशारा दिया था कि यूक्रेन पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाने के लिए लाइसेंस हासिल कर सकता है। तुर्की 36 मेडल्स के साथ वर्ल्ड कंप्यूटर की बोर्ड चैंपियनशिप पर गलबा हासिल कर रहा है। तुर्की की कौमी कंप्यूटर की बोर्ड टीम इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में मुनाकिदा 2026 इंटर स्टेनो वर्ल्ड कंप्यूटर बोर्ड चीफ चैंपियनशिप में दर्जाबंदी में सरफरिस्त रहने के बाद 36 तमगों के साथ वतन लौट गई है। 25 से 30 जुलाई के दरमियान होने वाले चैंपियनशिप में 34 ममालिक के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इंटरस्टैनो तुर्किया के मुताबिक ताजा तरीन नतज के साथ तुर्किया के 40 आर्मी रिकॉर्ड समेत आर्मी चैंपियनशिप की तादाद बढ़कर 145 हो गई है। फीफा के सदर जियानी अनफांतिनो ने कहा है कि आर्मी फुटबॉल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने वसी मुखालफत के बाद आर्मी कप में निजी सरमाकारों को शेयर फरोख करने के मनसूबे को कल अदम करार दे दिया है। इन्फांतिनियो ने जुमे को कहा, तमाम आरा को गौर से सुनने के बाद ये वाजह हो गया कि मंसूबा ऐसी तकसीम पैदा कर चुका है जो हमायत की सतह के बावजूद इब्तदाई तौर पर मुकर्रर करदा मकसद के मफाद में नहीं रहा। फीफा के सदर जियानी इन्फांतिनो ने एक बयान में कहा, हमारा मकसद हमेशा से है और हमेशा रहेगा इत्तेहाद और बेहतरी लाना अव्वलीन फर्ज है। फीफा ने मंगल के रोज ऐलान किया था वर्ल्ड कप और अपने दूसरे टूर्नामेंट के इंतजाम के लिए 20 अरब डॉलर की एक जेली कंपनी कायम करने का मंसूबा रखता है जिसमें बैरूनी समयकारों को 20% तक का शेयर पेश किया जा सकता है। इस फरोख से ज्यादा 4.2 अरब डॉलर हासिल हो सकते थे। UEFA और यूरोप की तमाम 55 एसोसिएशन ने इस तजवीज को मुस्तरद कर दिया और खबरदार किया अगर इससे पीछे न हटा गया तो वो फीफा के मुकाबलों का बायकॉट करेंगे। कंकाकाफ और इसकी 41 एसोसिएशन ने भी शफाफियत गवर्नेंस और मुनासिब मशावरत के फुकदान के हवाले से खदशा जाहिर करते हुए इस मुहदे को और मनसूबे को मुस्तरद कर दिया है। एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन जो 47 एसोसिएशन की नुमाइंदगी करती है ने UEFA और कंकाकाफ के साथ मुखालफत में शामिल होकर इसकी हमायत नहीं की। ये तीनों कन्फेडरेशन मिलकर फीफा के 211 मेंबरों में से 143 की नुमाइंदगी करते हैं। अफ्रीकी फुटबॉल कन्फेडरेशन ने तजवीज को बराह रास्त मुस्तरद तो नहीं किया मगर कहा है कि वह आइंदे हफ्ते एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में इस मनसूबे का जायजा लेगी। ओशिनिया फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ने भी कहा इस मसले पर अगस्त के एग्जीक्यूटिव इजलास में बात करेगी। इसके साथ ही इस तरह तुर्की से खबरें खत्म हुई। भाई सामिन सेजन अक्सू के आवाज में एक तुर्की नगमा सुनते हैं, गाने के बोल हैं हरकेस यारा।